हरि भक्ति परायण श्री गुरु धुंडा महाराज देगलूरकर विरचित नारद भक्ति सूत्र विवरण या ग्रंथाचं क्रमशः वाचन। प्रकाशक हरि भक्ति परायण भानुदास महाराज देगलूरकर, धुंडा महाराज मठ, उत्पाद गल्ली, पंढरपूर। वाचक ऋषिकेश अयाचित। ही वाचन सेवा हरि भक्ति परायण श्री गुरु चैतन्य महाराज।

0: पैशांची गरज आहे तर इकडे तिकडे कशाला मागायचे. आपल्याकडील सोनं देऊन नामको बँकेचे हक्काचे सोने तारण कर्ज घ्यायचे, तेही एका तासात.
1: व्याजदर 8.9% आणि शेतकऱ्यांसाठी व्याजदर 8.5%.
0: मुदत 1 वर्ष. आजच आपल्या नामको बँक शाखेला भेट द्या. नियम व अटी लागू.
2: मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाए. अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो. तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरा बुंदर की देख नहीं सकता है कोई. मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाए. मुझको भी तरकीब से

0: सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, लबों की मध्यम तवील सरगोशियों में सांसें उलझ गई थी, मुदे हुए साहिलों पे जैसे कहीं बहुत दूर ठंडा सावन बरस रहा था, बस एक ही रूह जागती थी। बता तो उस वक्त मैं कहां था, बता तो उस वक्त तू कहां थी, दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे।
1: नाशिक मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विभागात शिक्षणाची सुवर्ण संधी। विद्यापीठाचं नाशिक उपकेंद्र घेऊन आलंय MBA आणि BBA कोर्सेस। इंडस्ट्री सेंट्रिक लर्निंग घडवेल तुमचं फ्युचर। ऍडमिशन ओपन फॉर MBA अँड BBA। अधिक माहितीसाठी संपर्क SPPU सब सेंटर नाशिक 0253 2 39 21 21।

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा? हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा।

0: पर दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर है। दुनिया की गाड़ियां चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपने

0: ख्याल है आपका?
1: मेरा या मेरे बाप का?
2: ए, ए, ए, बाप के बच्चे?
0: नहीं नहीं आपका।
1: हाँ, अरे हुस्से।

0: कबूतर,
1: क्या क्या क्या बात है पुत्र।
0: अगर मैं जोश दिखा दूंगा,
1: मैं तेरे होश उड़ा दूंगा,
0: तुझे तारे दिखा दूंगा,
1: मैं नानी याद करा दूंगा।
0: पिचके गाल तो देख,
1: तू अपना हाल तो देख।
0: अब मैंने कई खेल है खेले,

0: Timothy? Tom? चलो घर चलो, बारिश होने वाली है।
1: तो क्या होगा? दिल के अंदर इतनी आग भड़क रही है कि ये बारिश तो क्या, आसमान भी फट पड़े तो भी बुझा नहीं सकता।
0: सुमति, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ।
1: कोई जरूरत नहीं, अब मेरे दिल की आग आपके खोखले शब्दों की रेत ठंडा नहीं कर सकती। दोष मेरा था जो गरीबी के पुल को पार करके अमीर के किनारे तक पहुंचना चाहती थी। मैं नादान थी, मगर आपने इशारा कर दिया होता कि ये कोशिश मत करो, इस कोशिश का अंजाम मौत है, बर्बादी है।
0: सुमति, मेरे जख्मों पे नमक न छिड़काओ।
1: छोड़ दीजिए, मुझे छूकर कहीं आपके हाथ मैले ना हो जाए।
0: क्या कह रही हो तुम? तुम्हें छोड़ने से पहले दुनिया ना छोड़ दूंगा।
1: अरुण बाबू, आज तक गरीबों की मोहब्बत दीवारों ही में चुनवाई गई है। आपकी दुनिया बहुत बड़ी है, मेरी दुनिया सर का छोटा सा दिल है और वो भी टूट चुके हैं।
2: सुमति, कुछ तो ख्याल करो, इतनी रात गई ये तमाशा किसने देख लिया तो रही से इज्जत भी मट्टी में मिल जाएगी। जाओ घर जाओ। डॉक्टर साहब, आप बड़े लोग हैं लेकिन एक तरह से मैं आपकी माँ की बराबर हूँ। इज्जत में न सही, उम्र में तो हूँ। आप अगर किसी गरीब का भला चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सुमति को भूल जाएं, और सुमति आप अपने प्यार के लिए माँ के प्यार से कुर्बानी न दीजिए। बच्चों की शादी ब्याह पर माँ बाप का अधिकार होता है, जाइए उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। अरुण, बारिश हो रही है, भीग जाओगे। माफ करना, नाम ले लीजिए। डॉक्टर साहब ठहरिए, मैं आपके लिए छाता ले आती हूँ।
0: जी नहीं, मेरी माँ ने मेरे शरीर में इतनी शक्ति दे रखी है कि ये बारिश तो क्या बड़े बड़े तूफानों को भी सह सकता है।

अरे मेरे पास तो ऐसे स्लीपर नहीं थे। ये घर, हमारा घर तो ऐसा नहीं था। ये एक रात में क्या क्या हो गया? वो कह रही थी 4 साल। हर चीज बदल गई है, मगर ये जख्म तब भी ताजा है।

0: मम्मी
1: किससे कह रही हो?
0: आपसे।
1: मुझसे? कौन हो तुम? ये घर तुम्हारा है?
0: ये आपको क्या हो गया मम्मी? आपकी तबीयत कैसी है?